हमको प्यारा प्यारा रामायण कथा सबको प्यारा. द स्टोरी ऑफ द रामायण इज मोस्ट प्लीजिंग टू ऑल. इट ऑफर्स द पाथवे टू हैप्पीनेस एंड द मेनी सिनेरियोस वी फाइंड देयर इन सर्व टू कीप अस ऑन द राइटियस ट्रैक. पिता पुत्र का प्रेम दिखलाए साक्षी है राम भगवान हमारा. रामायण स्पीक्स ऑफ द लव बिटवीन अ सन एंड हिज फादर एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय श्री राम एंड द किंग दशरथ. भ्रातृ प्रेम रामायण गावे. ऑफ कोर्स द रामायण सिंग्स द लव बिटवीन ब्रदर्स एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय लक्ष्मण एंड भरत. पतिव्रता धर्म रामायण बतलावे. It reminds us of husband and wife relations, and this relation is examined carefully in this beautiful scenario where Anusuya speaks to Sita. Pinda karma ramayan dikhlaye sakshi hai Bharat aur Ram hamara. Of course, emphasis is placed on Pitri Yagya in reference to the story of Ramayana with such performance by Shri Ram.

0: बिना इधर उधर देखे एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
1: एक मिनट
0: गो।
1: तुम हार गई।
0: अच्छा